सब तेरे चोज वडाणा, तू आपे दाता आपे पूता जी, हों तुद बिन और न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आ वखाणा, जो सेवै जो सेवै तो जी, जन नानक तिन करबाणा, हर दयावेर त्यावे तो जी, से जन जो मैं सुवासी, से मोह से मोत पहे जिन हर त्याया जी, तिन टोटे जम की फासी, जिन निर्भाव जिन हर निर्भाव त्याया जी, तिनका पौ सब गुवासी, जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी, त्यारा रूस मासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पड़ार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भग तेरे पासलां तुझे अनक अनेक अनंता, तेरे अनक तिन करे हर पूजा जी, तब तापे जवे बेअंता, तेरे अनेक तेरे नेक पड़े बहु सिमरसा जी, कर क्रिया खाट कर्म करंता, से पग पलज नानक जी, जो पावे मेरे हार भगवंता, तू आद पुरु परंपर करता जी, तो जे बड़ावर ना कोई, तू जो जो एको सदा तू एको जी, तू ने चल करता सोई, तो दे आपे पावे सोई वरते जी, तू आपे करे सो होई, तो दे आपे से सब पाई जी, तो दे आपे से सब गोई, जन नान गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानुया समला चौथा, तू करता सचार मैडा साई, जो तू पावे सोई तीसी, जो तू दे सोई हो पाई रहाओ, सब तेरी तू सब नहीं त्याया, जिसनों कृपा करे ते नाम रतन पाया, गुरमहला दा मन मुगवाया, तुरिया विछोड़िया मलाया, तू दरियाओ सब तुझी माए, तो बिन दूजा कोई नाए, जी जन सब तेरा खेल, वजोग मिल विछड़िया संजोगी मेल, जेहनो तू जाने सोई जन जाने, हर गुण साधी आप खाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा वर न कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होया समला पहला, तित सरल भैले नवासा पानी पाव तिने किया, पंगज मोह पाग नहीं चाले, हम देखा तैं डूबी अले, मान एक न चेस मूड मंदा, हर बिसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जसती नहीं पड़िया, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवर नानक तिनकी सरना, जैन तो ना ही विसरिया, आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते ना काम, मिल सासंद पाई केवल नाम, सरंजाम ला पौ जल तरन कह जन बिरथा, जात रंग माया के रहाओ, जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जाने हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण

बारा जिन्दर नाम त्यारो कहा दारद दुष्ट दो तेरा खड़ग के तमें शरण तिहारी आप हा दे लो अबारी सर्व डोर मोह सहाई दुष्ट दो ते लो बचाई सवैया पावेंगे जब ते तुम रे तब ते कौआ तरे नहीं आने राम रीम पुराण कुरान ने कह मत एक न माने सिमरत शास्त्र बे सब है बहुपेद क्या मेक न जाने श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तुए भगाने दोहेरा सगल द्वार को शाड के गहो त्वारो द्वार बाएं गए की लाज अस गोविंदास तुहार राम कली महला तीजा आनंद के ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद प्या मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तो पाया सहज सेती मन वजिया वादावियां राग रतन परवार परियां शब्द गावणे आईया शब्दो तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आओ ए मन मेरे आओ तू सदा रहो हर नाले हर ना रहो तू मन मेरे दूसा विसारना अंगीकारो करे तेरा कार सब सवारना सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या ना ही करते रह करता तेरे सब किचै दे सो पावे सदा सिवसला तेरी ना मन वसावे नाम जिनके मन वसया वाजे शब्द कनेरे कह नानक सचे साहिब क्या ना ही करते रह साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन पुखा सब गवाइया कर शां सुमन आय वसया जिन इशां सा पोजाइया सदा गुरबाण कीता गुर विटो जे दिया वड़ियाइया कह नानक सुनो संतो शब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंज शब्द कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंज दो तुद वस कीते काल कंडक मारे आ तुर करम पाया तो जिन को से नाम हर के लागे कह नान ते सुखो तित कर अनहद वाजे आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी संत साजन पै स्वर से पूरे गुर ते जानी सुनते पनीत कहते पवित सतगुर आपर पूरे बैनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मधावणी महला पंजवा थाल वेतन वस्तु पइयो सासन दो विचारो अमृत नाम ठाकर का पैयो जिसका सब सदारो जे को खावे जे को पूंछे तिसका हो अदारो
ਇਹ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਨੈ ਜਾਈ ਨਿਤਿਨ ਰਾਖੁਰ ਤਾਰੋ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗਤਰੀਐ ਸਭ ਨਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕਿਤੋ ਹੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।

हार रतन है का व्यापारिया, हार रतन तन विहाजे, कच्चे के व्यापारिये वाक हार तन लिया न जाई। हार तन रतन जवे हर माणक, हर तन है नाल अमृत वेले वत्त, हर भगती हर लिवलाई। हार धन अमृत वेले वत्त का बीजया, भगत खाए खच रहे निखुटे नाही। हालत पलत हर तने की, भगता को मिली वडियाई। हार धन निरभउ सदा सदा अस्थिर है साचा, ए हार धन अग्नि तस्कर है पाणी है जमदूत है, किसे का गवाया ना जाई। हार धन कहो उचका नेड़ न आवई, जम जा गाती डंड न लगाई। साकती पाप करके बिखिया तन संचया, तिन्ना एक विख नाल ना जाई। हलतै विच साकत दुहेले पए, हथों छुड़क गया अगै पलत, साकत हर दरगा टोई न पाई। इस हर धन का शाह हर आप है संतो, जिसनो दे सुहार धन लद चलाई। इस हर धन का तोटा कदे न आवई, जन नानक कौ गोर सोजी पाई। इस हर धन का शाह हर आप है संतो, जिसनो दे सुहार धन लद चलाई। इस हर धन का तोटा कदे न आवई, जन नानक कौ गुर सोजी पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला चौथा, जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई, गुर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लिया न जाई। धन वाहिगुरु साहिब जी, धन वाहिगुरु साहिब जी। गुसाई गृहस्थ रूपेण सिमरण सर्वत्र जीवन, लब्धियं संत संगेण नानक स्वच्छ मार्ग हर भगतण। मस्कं भगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपीलका, सागरं लघंत पिंगं ताम प्रकाश अंधका। साध संगेण सिमरंत गोबिंद शरण नानक हर हर हरे, तिलकहीन जथा विप्रा अमरहीन जथा राजना।
आवधहीनं जथा सूरा नानक तर्महीनं तथा वैष्णवा। ना शंखं न चक्रं न गदा न श्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं। नेत नेत कथंत वेदा ऊच मूच अपार गोविंदः। बसंत सादर दियं अच्युत बुझंत नानक बडभागिया। उद्यान बसनं संसारं सनबंधी स्वान स्याल खरह। बिखम स्थान मन मोह मदिरं महा असाध पंच तस्करा। हीत मोह पै परम प्रमणं अहं फास्ति क्षण कठना। पावक तो असाध कोरं अगम तीर ना लंगना। भज साध संग गोपाल नानक हर चरण शरण उधरण कृपा। कृपा करंत गोबिंद गोपाला सगले अंग रोग खंडना। साध संगेन गुण रमत नानक शरण पूर्ण परमेश्वरा। श्यामलं मधुर मनुख्यं हृदयंग पूम वैरणः। निवंत होवंत मिथ्या चेतनं संत सुवज्जना।

0: काल कन्या ग्रास्ते रचंत पुरखा कुटंब लीला अनित आसा विखया विनोद परमंत परमंत भोजन महारियो शरण नान करुणा मया हिजे बे हिरस गे मधुर प्रेतों सत हतं परम बादं अवृत एथा सुद अशरणा गोबिंद दामोदर माधवे गर्भंत नारी मदोन्मतं बलवंत बलात् कारणः चरण कमलनः पजंत तृण समान त्रिग जन्मना हे पपील काग्रस्ते गोबिंद सिमरण त्वंग तने नानक अनक बार नमो नमः त्रिणंग तमेरंग सहकंग तहरियंग भूडंग तरियंग ऊणंग तपरियंग अंधकार कोट सूर उजारंग बिनवंत नानक हर गुरदयारंग ब्राह्मण संग उदरणंग ब्रह्म कर्म जे पूर्ण आत्मरतंग संसार गह ते नर नानक निफला परदर्भ हिरणं बहुविघ्न करणं उच्चरणं सर्वजी कह लौ लई तृष्णा अतिप्त मन माये कर्म करत से सूकरा मते समेव चरणं उदरणं पैदुतरह अनेक पातक हरणं नानक साध संगमना संसया महला पंजवा गाथा एक ओंकार सत गुर प्रसाद कर्पूर पोहप सुगंधा परस मनुख देहं मलीनं मज्जा रुधिर दुर्गंधा नानक अथ गर्भेण अज्ञानन परमाणु प्रजंत आकाशः दीपलो शिखंडनः गशेण नैन पारेण नानक बिना साधु न सिद्धते जानो सत होवंतो मरणो दृष्टेण मिथ्या कीर्त साथ चलंतो पणंत नानक साध संगेण माया चित परमेण इष्ट मित्रेख बांधवाह लब्ध अंग साध संगेण नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैलागर संगेण निम बिरख से चंदना निकट बसंतो बांसो नानक आंग बुद्ध न बोहते गाथा गोंफ गोपाल कथं मथंग मान मर्दन हतंग पंच शत्रेण नानक हर बाणे प्रहारण बचन साध सुख पंथा लहंता बड कर्मण रहंता जनम वरणेन रमण नानक हर कीर्तना पत्र पुरजेंड चढ़ियंग ना जड़ियंग पेड संपता ना बिहोन बिकमता नानक बहंत जोन बा सरू रहनी पावनी साध संगेण लभंतं बड भागण हर नाम गुण रमण नानक संसार सागर न व्यापना गाथा गूढ़ अपारं समझनंग बिरलाजनः संसार काम तजनं नानक गोबिंद रमणं साध संगमा सुमंत्र साध बचना कोट दुख बिनासनः हर चरण कमल ध्यानं नानक कुल समूह उदाहरणः सुंदर मंदर सैनः जेन मध्य हर कीर्तनः मुक्ते रमण गोबिंदः नानक लब्धं बाड भागणा हार लब्धो मित्र सुमितो बजारण कदे न चितो जा का अस्थल तोल्य मितो सोई नानक सखा जी संकितो आप जसंग मिटंत सत पुत्र सिमरत अबृदे गुर मंत्रण प्रीतम भगवान अचुत नानक संसार सागर तारण मरणं विसरणं गोविंदः जीवनं हरनाम त्यावणः लब्णं साध संगेण नानक हर पूर्व लिखना। दसन बिहोन पुयंगं मंत्रं गारुडी निवारं व्याद उपाड़न संतं नानक लब्ध कर्मणा। जाथ काथ रमणं शरणं सर्वत्र जीर्णः तथ लग्नं प्रेम नानक प्रसादं गुरुदर्शना। चरणार बिंद मन बिद्यं सिद्यं सर्व कुशलना गाथा गावंत नानक पबिंग परा पूर्वना। शुभ वचन रमणं गवणं साध संगेण उदरणा संसार सागरं नानक पुनरप जन्म ना लभेते। वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम युर तारं कुल समूह सगले उदारं बडपागी नानक उतारं। सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहणा लब्धं साध संगेण नानक बडपागी पेटंत दर्शना। सर्व दुख परंत्यागे सर्व धर्म दृढ़ंतरणः लब देण साध संगेण नानक मस्तक लिखेणा। होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सतम जानो नानक प्रीत कारण। सुखेण बैण रतनं रचनं कुसुम रंगणा रोग सोग वियोगं नानक सुख ना सपना। फुनहे माला पंजवा एको ओंकार सतगुरु प्रसाद।
1: मस्तक लिखावती उर्ज रहो सब संग अनूप रूपावती उस्तत कहन न जाए मुखो तुहारिया मोहि देख दर्श नानक बलहारिया। संत सभा में बैसकै कीर्त में कहा अर्पी सब सिंगार एहो जियो सब दिवा आस प्यासी सेज सुकंत विशाई हर हां मस्तक होवे भाग तां साजन पाई है सखी काजल हार तंबोल सबे के साजिया सोले किए सिंगार के अंजन पाजिया। जे घर आपे कंत ता सब किश पाई है हर हां कंते बाज सिंगार बिरथा जाई है। जिस कर बसिया कंत सा बड भागण तिस बनिया हब सिंगार साई सुहागण। हों सुती होए अचिंत मन आस पुराईया हर हां जां घर आया कंत तां सब किश पाईया। आसा इति आस के आस पुराई है सतगुर पहे दयाल ता पूरा पाई है। मैं तन अवकन बहुत के अवकन छाया हर हां सतगुर पहे दयाल ता मन ठहराया। कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया दुतरियो संसार सत गुरु तराया। मिटिया या भगौण जा पूरा पाया हर हां

सखी मोरे कंठ रतन पेख दुख नासन बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद सिद्ध नवनित बसे जिस सदा कर पर त्रै रापन जाहे से तां लाजियै नित प्रत हिरै पर दर्प शिद्र को ढाकी है हर गुण रमत पवित्र सुर खुरता रही हर हां सुनते पय पुनीत पार ब्रह्म विचारय ऊपर बन आकाश तले तर सोहती दर्द से दै दिस चमके बीजल मुखो जोहती खोजत फिरो विदेश पियो कत पाई है हर हां जे मस्तक होवे पाग तां दर्श समाई है डिठे सबे थाब नहीं तुद जेहिया बद्धो पुरख विधाते

हर हाँ चंचल चोरे मार तपावे सचतना सुपने उभी पई गेहो की नयन चला सुंदर पुरख बिराजत पीख मन बंचला।

सठ का शार तन, फिर तो गर्भ गुफार, मरण नह जानई, हर हर चंदोरी पेख, काहे सच मानई, जसकी पूजे औद

ओ खुद नामी अपार अमोलक पीजई मिल मिल खावहि संत सगल को दीजई जिसे प्राप्त होए तिसे ही पावने हर हम बलहारी तेन जे हर रंग रापणे वैदा संदा संग इकट्ठा होया अखुद आए रास विच आप खलोया।

तुमरो कहियो न कोए, कबीर चांख ना चंखिए। तुमरो कहियो न होए, कर्म करीम जो कर रहे, बेट न साके कोए। कबीर कसौटे राम के, झूठा टिके न कोए। राम कसौटी सो सह, जो मर्जी पा होए। कबीर उजल पहरे कापरे, पान सुपारी खाए। एक सहार के नाम बिन, बादे जंपर जाए। कबीर बेरा जर्जरा, फूटे शेंक हजार। हरुए हरुए तर गए, डूबे जिन सिर पार। कबीर हांड जरे जो ला करे, के सजरे जो कास।

कबीर गर्भ ना कीजिए, चापल फेटे हार है वरियू पर शतर तार, ते फुन तरणी गाड़। कबीर गर्भ ना कीजिए,

कबीर कर बना कीजिए देह देख सुरंग आज काल तज जाहोगे ज्यों कांचुरे प्यंग। कबीर लूटना है ता लूट ले राम नाम है लूट फिर पाछो पछताहेगे प्राण जाहेंगे छोट। कबीर ऐसा कोई न जन्मयो अपने कर ला फे आग पंचो लड़का जार कै रहे राम लिब लाग कोहै लड़का बेचै लड़की बेचै कोए सांझा करे कबीर स्यों हर संग बणज करे। कबीर एह चुतावनी मत सहसा रह जाए पाछे भोग जो भोगवे तिनको गुड़ लै खाए। कबीर मैं जानियो पढ़बो पलो पढ़बे सो पढ़ जोग भगत न छाडो राम के पावे निंदो लोग। कबीर लोग के निंदे बफड़ा जे मन नाही ज्ञान राम कबीरा रब रहे अवर तजे सब काम। कबीर परदेसी कै घागर चौह दिस लागे आग खिंता जल कोयला पाए ताके आंच न लाग। कबीर खिंता जल कोयला पाए खापर फूटम फूट जोगी बपड़ा खेलो आसन रही बपोत। कबीर थोरे जल माछले तीवर मेलो जार ए टुगन नश न छूट सै फिर कर समुंद समाल। कबीर समुंद न छोड़िए जो यत खारो होए पोखर पोखर ढूंढते पलो न कह है कोए। कबीर निगस आए बहकए तांगे नाही कोए दीन गरीबे अपने करते होए सोए। कबीर बैसनो के कुकर फले साकत की बुरी माए ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए। कबीर हरना दुफला इहो हरियाला ताल लाख एहेरे एक जियो किताबन चो काल। कबीर गंगा तीर जो

यूं कह रमे कबीर, कबीर मन निर्मल पिया, जैसा गंगा नीर, पाछे लागे हर फिरै, कहत कबीर कबीर, कबीर हर दे पियारे, चूनायू जल पाए, राम स्नेहे तो मिले, दोनों वर्ण गुफाए, कबीर हर दे पिरतन हरै, चून चहन नार हाय, बलहारी एह प्रीत च बलहारी ए प्रीत को, जेह जात बरन कुल जाय, कबीर मुक्त द्वारा संकुरा, राई दसाएं पाए, मन तुम्हें कल होए रहे हो, निकसो क्यों कर जाए, कबीर ऐसा सतगुर जे मिले, तुठा करे पसाओ, मुकत द्वारा मोकला, सहजे आबो जा, कबीर ना मोह शान नशा परे, ना मोहे करने गाओ, मत हर पूछे कौन है, मेरे जात ननाव, कबीर मोहे मारने का चाऊ है, मरो तहर के द्वार, मत हर पूछे कौन है, परा हमारे बार, कबीर ना हम किया न करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किस हर किया, पयो कबीर कबीर, कबीर सुपने हूँ बरड़ाए कै, जेह मुख निगसै राम, ताके पग के पन ही मेरे तन को चाम, कबीर माटी के हम पुतरे, मानस राख्यो नाऊ, चार दिवस के पहुने, बड बड रूंदे टाव, कबीर मेहंदी कर कहलिया, आप पिसाए पिसाए, तैसे बात न पूछिए, कब हुन लाई पाए, कबीर जेह दरियावत जात हो, हटके नाही कोए, सोदर कैसा छोड़िए, जो दर ऐसा होए, कबीर डूबा था पै उबरियो, गुण की लहर चबक,

कर्मं कर्मं सफक नेश्च कर्मं कहो नानक नेश्च त्यावे मैंने सतगुरु।

सुही महला चौथा। जिथे हर आराधिय तिथे हर मित सहाई। गौर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया ना जाई। जिथे हर आराधिय तिथे हर मित सहाई। गौर कृपा ते हर मन वसै, होरत बिद लया ना जाई। हार धन संचिए पाई, जे हलत पलत हर होए सखाई। रहाओ सत संगति संग हर धन खटिए,

0: इस देही को बहुत साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरे
1: जल तो वे बोले अनीत शुद्ध का होई काची पीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच
1: हो सियानक जन का पौ व्यापे अनक जतन का कृष्ण ना करापे
0: देख अनेक अगन नहीं बुझे कोट अपाव दरग नहीं सिजे
1: शूटस नाही उपयाल मुह व्यापे माया जाल
0: अवर कर तू सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने
1: हर का नाम जप दुख जाए नानक बोले सह सुभाए
0: चार पदार्थ जे को मांगे साध जना की से

0: जो शरणा सो अस्थिर कर माने, जो हवन सो दूर पराने,
1: छोड़ जाए जिसका शरम करे, संग सहाई जिस पर हरे,
0: चंदन ले पोतारे तोए, घर तो प्रीत पसंग संग होए,
1: अंधकूप में पति विकराल, नानक काढ़ लियो प्रत्याल,
0: करतूत पशु की मांस

0: पूरा निस्कई है तो समझे पूरा कह पिंगल पर्वत पर पवन नहीं होत वहाँ उस गवन
1: सरदार करुणा में दीन बेंती करे नानक तुमरी कृपा करे
0: संग सहाई सो आवे न चीत जो बैराई तासो प्रीत दृढ़ कर माने मने प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत
1: क्रोध काम क्रोध
0: जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लो आप।

0: जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिष्ठा कर को रख मन माए
1: जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरन परम गत पावे
0: जे प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर
1: जे प्रसाद रह संग सुख बसना आठ पै सिमरो तिस रसना
0: जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याए त्यावन जोग
1: जे प्रसाद पाठ पटंबर हटावे तिसे त्या का त्यावर लुभावे
0: जे प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जा

0: जय प्रसाद असव हस्त सवारी मंत प्रभ को कबु ना बिसारी
1: जय प्रसाद भाग मिलक तना राग प्रवे प्रभ अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठत सत से
1: ध्याई जो एक रखे यहां अंत तेरी रखे।

0: साध के संग मुख उजल होत, साध संग मर सगली खोत।
1: साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान।
0: साध के संग बुझे प्रभ नेरा, साध संग सब होत नबेरा।
1: साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन।
0: साध की महिमा बरने कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माए समानी।
1: साध के संग गोचर मिले, साध के संग सदा पर फुले।
0: साध के संग आवे बस पंच, साध संग अमृत रस पुंचा।
1: साध संग सबकी देन, साध के संग मनोहर बहन।
0: साध के संग न कतहु तावे, साध संग अस्थित मन पावे।
1: साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न।
0: साध संग दुश्मन

0: साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध संग बस्त गोचर ले साधु के संग अजर सह
1: साध के संग बसे तन ऊंचे साधु के संग महल पहुंचे
0: साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म
1: साध के संग पाए नाम निदान नानक साधु के कुर्बान
0: साध के संग सब कुल उधारे साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तार
1: साधु के संग सोतन पावे जिस तांते सब को बरसावे
0: साध संग धर्म राय करे सेवा साध के संग सो बासुर देवा
1: साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन
0: साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जन्म
1: साध के संग नहीं कष्ट काल दर्शन पेट द होत निहाल
0: साध के संग कलोखत हरे।

0: समान ब्रह्म ज्ञानी कहलाए ब्रह्मान।
1: ब्रह्म ज्ञानी उच्चते उच्चा मन अपने है सब ते नीचा।
0: ब्रह्म ज्ञानी से जन्म पहे नानक जन प्रव्याप करे।
1: ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना।
0: ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी
1: ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी।
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल झुकता।
1: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का

0: कई कोट पूत प्रे सुकर मिर्गाच
1: सबते निरे समूते दूर नानक आप जब करया परपूर
0: कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक स्वर्ग निवासी
1: कई कोट जन्म जीवे मरे कई कोट भोजनी फिरे
0: कई कोट बैठत ही खाए कई कोट काले थक पाए
1: कई कोट के तनाद कई कोट माया में चंद
0: जय जय पाना।

कबू है पंडित करे बखियान, कबू मोन तारी लावे ध्यान, कबू कीट हस्त पतंग है जिया, अनेक जोन पर मैं परमिया, जो तिस पावे सोई होए, नानक दूजा अवर न कोए, अंतर होए ज्ञान

जिसके अंतराज विमान सो नरक पाती हो वसवान। आपस को कर्मंत कहावे जन्म रे बोजोन परमावे। कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे नानक इया मुग्धा के सुख पावे। बोलस कर मान को ऊपर करे आस पल पीतर ता का होए विनाश। किसे न बदे आप अहंकारी धर्म राय ते करे खुवारी। कोट कर्म करे अवतारे शरम पाए सगले बिरथारे। अनेक जतन कर आत्म नीदर वे हर दरगे को कैसे गवे। सर्व की रेंजा का मन होए को नानक ताके निर्मल सोए। जब बे जाने मैं कछ करता तब लग गर्भ जोन में फिरता। जब लग मोह मगन

0: संत का निंदक राजते हीन, संत का निंदुखी आरदीन,
1: संत के निंदक को सदा बिजोग,
0: संत की निंदा

संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्यागे, संत का दुखी जन्म में मरे, संत की दुख ना सुखते टरे, संत का दुखी अद बीत टूटे, संत का दुखी से काज

0: रब की उस्तत करो दिन रात, तिसे ते आवो सास ग्रास।
1: तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया।
0: अपना खेल है।

जैसा सत है सदृष्ट आया अपने कार्य में आप समाया। जब देखो तब सब कुछ मूल है नानक सो सुखम सोई।

राज में राज जोग मैं जोगी, तप में तपिस्तर गृहस्थ मैं भोगी। जाकी लीला।

0: गुणकारी
1: भोजनहार
0: को सत सब होए नानक सत सत प्रस होए
1: स्वरूप जन मान्या
0: जाके दे विश्वास।

0: निराहार निर्वय सुखदाई, ताकि कीमत किने न पाई।
1: अनेक भगतन दंडित करे, चरण कमलेर दे सिमरे।
0: सद भलिहारी सद गुरु अपने, ना जिस पर साध ऐसा प्रभ जपने।

0: मोह माया के संग न लेप, मन में राखे हर हर एक। कौ तमाई ताड वरताई, नंद पया दुख नाठे पाई। पहुंचू का निरपो होए बसे, सगल ब्याद मानते खेन से।
1: जिसका साधन कृपा दारी, सा संजना हमरारी।
0: चित पाई चुके प्रम

0: एक सिमर नाम आधार
1: अरे माता बीत पसारो चरण कमल में वृतारो
0: कर्ण कर्ण सो प्रभ सम्राट दृढ़ कर गयो नाम हर बात एक आशा को मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाए जिस को निर्बाचे मीत सो सुख साधु संग प्रीत अनुपावी रोग न जाए रोग मिटे हरे अवखद लाए मन पर वो दो हर के नाए दर्द स्थावत आवे ठाए
1: लागे कोई
0: कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा

0: जब अकार कृष्णा दिसते ता पाप पुन तब कहते होता
1: जब धारी अपन सुन सुमाद तब बैठ गुरु के संग माद
0: जब इसका बन चेना जापत तब हर कसोग को किस

में पार, तब नर्क स्वर्ग कौन अवतार। जब आपे आप अपनी जोत रे, तब कवन डर कवन का डरे। अविनाशी सुखी अपने आसन, तय जना मरन कहो कहाँ विनाशन। जब अभिगत गोच प्रवेका, तब चित्र गुप्त को पुष्ट लेखा।

निर्वाण ते कौन को मान कौन अभिमान जय जो सूपी ज्योत संग समावे तय किसे भूख कम तिपतावे रवे अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कौन माई बाप मित्र सुत भाई रवे अपने आप आपुर तारे तो सगन अब सगन कहाँ।

0: भरे।
1: आप कथे आप सुनने हार, आपे एक आप विस्तार।
0: जादे पावे ना से जो पाए, अपने पाने ले सुमाए।
1: तुम ते पिन नहीं कछोए आप।

0: दयाल सब ऊपर होवत कृपाल।
1: अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप।
0: प्रत पाले जियन बपात जो जो रचियो सो तुसे त्यात।
1: जिस पावे दिल रहे मलाए भक्त करे हर के गुण गाए।
0: मन अंतर विश्वास कर मन्या करन हार नानक एक।

0: ताए नाते जन सोजी पाए
1: सो बार अनंत कट कट व्यापरिया भगवंत
0: तन माया काश प्याल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल
1: तन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म
0: कौन पानी बेसंतर मा है चार कुंट दद से समा है।

0: संजना सुनो शुभ बचन सर्वव्यापी राम संग रचन
1: साधु सब कहत
0: जो जो होए सोई सुख माने कर्ण करावन हार प्रभु जाने
1: अंदर बसे बार भी होई नानक दर्शन दे सम होई
0: आप सत किया सब सत तिस प्राप्त ए सगली उत्पत
1: तिस पावे न करे विस्तार तिस पावे का एक अंकार
0: अनि करा लखी न जाए जिस पावे सले मिलाए अंतर्गत जैसे आप जन आए ना से जन आप बुझाए।

0: कीनी माया।
1: सब के मत अलपतो रहे, जो कुछ कहना सो आपे कहे।
0: आग्या आवे आग्या जाए, नानक जा पावे ना ले समाए।
1: इस्ते ओए सो ना ही बुरा, उरे कहो किने कुछ करा।
0: आप लाकर तू जतनी की, आपे जाने अपने जी की।
1: आप साच तारी सब साच, ओत पोते आपन संग राच।

जन के चरण वसै मेरे ही आरै संग पुनीता देहे जन की धूर देहो कृपा निद नानक कै सुख हे।